हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति।

से भी कम के बेतरा भव समुद्र सुकरनाव के करामला परम शांति परम निदान दिव्य राम